वास्ते बछोड़ा दे रहे। ना महाराज, इंज ना करना, असी तुहाडे दर्शन कर करके जिउंदे हां। तको संगतां वल किवें हंझुआं दा मीह वरसा रहीआं। ना महाराज, असी ये विछोड़ा सहार नहीं सकांगे। संगतां दा वैराग देख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करवाया। पंजा सिंघां नूं तैयार करके गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच खला रहा। आप गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां परिक्रमा कीतियां। पंज पैसे ते नारियल लै के गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे नमस्कार कीती। सिंघो, अज मैं तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ ला के चलिया। अज तो बाद देहधारी गुरु नहीं होएगा, बाणी गुरु, गुरु है बाणी। आत्मा ग्रंथ विच, शरीर पंथ विच, जिन्हें मेरे शरीर करके दर्शन करने होण, मेरे खालसे का दर्शन करे। जिन्हें मेरे नाल वचन करने हो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी प्यार नाल पढ़े। मेरा खालसा हमेशा गरीबां ते मजलूमां दी खातर जूझदा रहेगा। ये अपना धर्म भी बचाएगा, दूजिया का धर्म भी रखेगा। हमेशा ही गरीबां ते मजलूमां दी खातर जूझेगा, सर्वत दा भला करेगा। अज ये बचन आख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हुक्म कर दिता, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ। अब्दाली ने वार वार हिंदुस्तान पे हमला किया। हमला करता है, लुट मचा के चला जाता है, तबाही कर जाता है। तैनू कोई रोकने वाला नहीं? हां भाई, हुण तू हिंदुस्तान विच तबाही नहीं मचा सकता, क्योंकि सानू गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जदों गुरु दे लड़ लाया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का लड़ पकड़ाया ते समझाया सी। सर्वत दा भला करना है, दूजियां दा धर्म बचाना है। आ एक दिन फिर चौथी वार अब्दाली ने हिंदुस्तान ते हमला किया है। आगरा ते मथुरा शहरां दे विच इहदे सिपाहियां ने लुट मचा दी। मंदरां विचों कीमती जेवर चुरा लए। किड्डा पापी है, भगवान दियां मूर्तियां तो भी मुक्त लाई जांदा है, होर भी घोर पाप करदा है। घरां विचों कीमती समान भी लुट लिया ते नौजवान बहु बीबियां नूं भी, बेटियां नूं भी पकड़ के गड्डियां विच बिठा के इहदे सिपाही लै चले। सतसंगियो, बीबियां ने हाल दुआई मचाई है। किसे ने भरा नूं आखिया, वीरा मैं तेनूं लकड़ी वधे सी। किसे ने बाप नूं आखिया, बावला मैनूं रख लै। पर अब्दाली दियां फौजां अगे किसे दा जोर नहीं चलदा। कीमती समान ते बीबियां नूं, बच्चियां नूं गड्डियां ते लद्दिया तुर पिया है।
ਜਦੋਂ ਪੁੱਜਾ ਮਾਰਕੰਡਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਬਈ ਆਹ ਗੱਡੇ ਤੇ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਗੱਡੇ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਲ ਦੁਆਈ ਮਚਾਈ, ਓਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਚਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਜ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਕੜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

कौन जाने मेरा नाऊ जियो जिनी सखी शौर आवे आ जिन्हां ने पति दा प्यार प्राप्त कीता जिन्हां ने मालक दी खुशी प्राप्त कीती से अंबी छावड़ी ए जियो ओ अंबा दी छावे बैठियां खुशियां बांटदियां ने पति प्यार दे आनंद विच मगन ने जीवन दा रस लै रही ने से गुण मंज नावनी ओ गुण मेरे विच नहीं हों कह जी दोष त्रेऊ जियो मैं किने ते दोष देवा किसनू आखा माड़ा के मेरी हालत किसने कीती आम तौर ते मनमुख दी ये दशा है कि वो जो भी करदा है ना ओदे सामने फिर जो कुछ नतीजा आउंदा है वो आले दुआले ते दोष लभदा है किसी होर दे कारण करके मेरे ते आफत आई है विपता आई है मेरी बेरसी हुई है अपने दोष नहीं देखदा हालांकि पावन बाणी विच बड़ा स्पष्ट किया गया है दत्ता दोष ना देऊं किसे दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजाए अवरजना और अपने दोषा वाले चाहत मार लेनी भी बड़ी वड्डी गुरमुखताई दोष हुंदिया होया गुनाह हुंदिया होया गलतियां हुंदिया होया इन्हां ते निगाह मार लेनी ही बड़ी वड्डी गल है जेड़ा अपनियां गलतियां वल ना वेखे ते अपने अगे आए हुए नतीजियां तो भी दूजियां नूं दोषी ठहराउण दा जतन करे वह बंदा कदे ठीक राह ते नहीं तुर सकदा दूजियां च दोष कढ़न वाला बंदा कदे आप ठीक नहीं हो सकदा शुद्ध पवित्र ते निर्मलता वह होवेगा जो अपने दोष लभण दा जतन करे इथे अपने दोष लभण की गल मारे सच्चे पातशाह ने शब्द द्वारा सानू प्रेरणा बख्श की हों कह जी दोष त्रेऊ जी मेरे अपने इन्ने दोष ने मैं किसे नूं कादा दोष दे मेरे विचों गुण नहीं हन कि

मोख मुक्ति सार ना जाना। हमच माया हमच छाया हमें कर कर जंतु पाया, हमें बुझे तंद्र सूझे ज्ञान में होना कथ गलूझे। नानक हुकमी लिखिए ले।

संभाले समनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी तहा सो करता चिंता करे जिन पाया जग इस जोहारी स्वस्थ स

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन।

हे शब्द धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पुंज बाणी दे बोहित

पूरे गुरु दा मिलाप होया, उदी बख्शिश होई है। जमदूत मेरे नालों हट गए ने, उना दा सहम मैनू हुण सता नहीं रहा, ओ भज गए ने मेरे कोलों।

धन गुरु अर्जन देव महाराज आप कहते हैं फिर ओ परिपूर्ण परमात्मा सदा उन्हां जपन वालियां दे अंग संग है। ए शब्द गुरु अर्जन देव पातशाह दा उचारण कीता होया जिदे विच आप कहंदे हन हे प्रभु हर का नाम हृदय नित ध्यान। हे प्रभु मैं तेरा नाम सदा हृदय विच वसावा। हर का नाम हृदय नित ध्याई सदा तेरा नाम मैं हृदय विच जपा मन करके जपा। हर का नाम हृदय नित ध्याई संगी साथी सगल तराई। ए नाम जपन दे सदके जिना जिना ने भी मेरे नाल बैठ के तेरा सिमरन कीता है नाम जपया है और जपन गे हे प्रभु कृपा करी उना सारिया नु ही अपने नाम दे सदके तार लें। हर का नाम हृदय नित ध्याई संगी साथी सगल तराई। ते जो नाम जपदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह क्यों दिन फिर उना दे अंग संग हुंदा है गुरु।

हो जाएगी। बाबा नंद सिंह जी महाराज क्या करते सन, जदों जीव नाम जपदा है फिर नाम जपन वाला और नामी विच फर्क नहीं रह जाता, हर हर जन दो एक है। बिप विचार किछ नहीं, जल ते उपज तरंग जियो, जल ही बिखे समाए। नाम जपन वाली आत्मा परमेश्वर दे एडे नेड़े हो जांदी है कि फिर जदों संसार दे दुख आउंदे हन तां उस आत्मा नूं ओ दुख दुखी नहीं कर सकदे। दुखां विच भी रह के ओ सदा परमात्मा दा शुकराना करदा है, पाणी मंदा है ते की कहिंदा है, तेरा किया मीठा लागे। हे प्रभु तू सुख विच रखिया है, मैनू दुख विच रखिया है, ए तेरा ही हुक्म है, तेरा ही पाणा है। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, मैं तां हे प्रभु सदा तेरे चरणा विच एही आराधना करांगा कि तू मैनू अपना नाम बख्श, मैं तेरा सिमरन करा, अमृत वेले उठ के तेरी भक्ति करा। और जो परमात्मा दी भक्ति करदे हन, गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, गुरु सदा उन्हां दे अंग संग है।

दरबार विच बैठे साई मियां मीर आया बेनती कीती गरीब निवाज आपने जो ए बाणी रची है तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे आपने बाणी रची है तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाएं ऐसा कौन है।

जिस वेले आख्या गुरु अर्जन देव ने, मियां मीर जितने तन पर पड़ेंगे छाले उतने सिख होंगे सिद्धक वाले, उतने ही सिख सिद्धक वाले होंगे। जे गुरु ने पाना नहीं मनिया तो सिखा ने फिर पाना क्या मनना है। ते फिर जिस वेले चंदू आया अजे भी मन नहीं भरिया तो साहब जी कहन लगे चंदू साडा मन करदा है असी स्नान करिए। तीन दिन हो गए हन चौकड़ा मार के बैठे हैं, साडे प्यार वाले जेडे नाल आए सन उन्हां नूं बुलाओ। ओ प्यार वाले गुरु अर्जन देव पातशाह नूं प्यार नाल इस वेले रावी दे किनारे ते लियाए। साहब जी कहन लगे हुण साडा गुरु नानक दे पास जाण दा समां आ गया, असी जपजी साहब पढ़ांगे ते जपजी साहब दा जिस वेले समाप्ति करांगे अपना शरीर अलोप कर लांगे रावी विच ते तुसी वापस हरिमंदर साहब अमृतसर चले जाणा। ते ए सब नूं आखणा कि गुरु अर्जन जी ने उस अकाल पुरख दे पाणे विच रह के उसके हुक्म विच अपना सिर नवाया। जपजी साहब जिस वेले गुरु अर्जन देव जी ने आरंभी ते जिस वेले जपजी साहब का भोग पाया जिनी नाम त्याया गए मशक्कत काल नानक दे मुख उजले गेती छिट्टी नाल रावी विच अपना शरीर अलोप कर लिया। ते मानो अजे भी रावी दी लहरां विचों ए आवाज गुरु अर्जन देव दी आ रही।

विद्या मानो के नाम जपण वालियां दे देवते, नाम जपण वालियां दे वड्डे जिन्हां नूं सारियां ने सत्कारिया, ऐसे भगत नामदेव ने बचपन दे विच नारायण नूं प्रगट करके दुध पिलाया ते शब्द उचारण होया दूध पियो गोविंदे राये, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं ता कर को बाप रे साए। ते कहंदे ने आखर भगती परवान होई नामदेव जी दी, ते दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन भया। नामदेव नू हरी दे दर्शन होए,

ज्ञानेश्वर जी महाराज। स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज दे पंथ दे विच दाखल हो गए ते चल पे उना दे

स्वामी ज्ञानेश्वर जी ने विश्राम कीता। देखिया नेड़े एक खूह दिखाई दे रहा है, मगर उस दे विच पानी कोई दिखाई नहीं देंदा। खूह ते है मगर पानी कोई नहीं। ते ज्ञानेश्वर जी महाराज ने सोचिया, देखिया बई ए मेरे नाल जो

एक किस्सा तरती तेन से पानी मन्या गया समुंदर बड़ा वटे एक वरी देवतियां ने विचार की थी देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचो चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी सलाह कीती सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहीदी रस्सा चाहीदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी तां सारियां देवतियां सलाह करके मंदरा चल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया शेष नाग नू उस पर्वत दे द्वाले लपेटिया गया एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पास से दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले एक वरी साप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने साप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਦੈਂਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ते सारियां तू पहला जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुट देने ता नुकसान बड़ा हुंदे ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करदे जहर तों बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नू इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिते अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लग गया

द्वापर युग बीत गया, कलयुग आया, धन गुरु नानक साहब का अवतार होया। आओ हुण गुरमत अनुसार अमृत बारे विचार करदे हां, क्योंकि हर पक्ष देख के फिर चलना चाहिदा है, ता आनंद और समझ पूरी आंदी है। धन गुरु नानक साहब का अवतार होया सुल्तानपुर लोधी। धन गुरु नानक साहब जी ने जदों रहना शुरू किया, रोज अमृत वेले नदी ते इशनान करन जांदे ने, अज भी इशनान करन गए। सेवक खलोता है, देख रहे है, अचानक इशनान करदे हैं। धन गुरु नानक साहब ने पानी दे विच ऐसी झुब्बी लाई कि दोबारा उत्ते नहीं आए। सारे सुल्तानपुर लोधी खबर फैल गई कि गुरु नानक डुब गए, पर गुरु नानक साहब दे वड्डे भैण जी बेबे नानकी ओ कहन लगे मेरा वीर डुबिया नहीं, क्योंकि मेरा वीर ते डुबदिया नूं तारण वास्ते आया। दूसरे पासे धन गुरु नानक साहब चुभी मारी पानी विच पहुंच गए सचखंड। अकाल पुरख दे सामने खलो के हाथ जोड़े ते नाले

कीर्तन करन वाला। तन गुरु नानक साहब कहंदे ने हों ढाडी विकार, मैं उस परमेश्वर दा ढाडी हां उदा कीर्तन करन वाला, पर मैं वेला सी। कारे कहंदे ने कम

सुत कंधे ने पुत्र धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नु कहंदे ने ऐ अकाल पुरख तुसा कहा सी मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहले जन्म का नाम दुष्ट दमन सी। ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलाण वास्ते। ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नूं देया कहो जिहा मैं

संगत च खलो के उची उची बोलन लग पे कहन लगा महाराज ए कंगाल ए हीरियां दे कंगन किवें दिस सकदा है इस कंगाल पिछे तुसी भारी संगत विच मेरी बेइज्जती कर दे असी मसंद लोग जगह जगह जाके प्रचार करदे हैं गुरु घर वास्ते दसवंध लैके आने हैं ते तुसी साड़ी बेइज्जती कर दे इस झूठे ते कंगाल सिख पिछे जदू ए गल कही ते कलगीधर पातशाह अपने सिंघासन तो उठ के खड़े हो गए साहबां दे चेहरे ते सख्ती दा रंग आया चेतु मसंद ने सिर ते पग बन्नी सी साहबां सिर ते हाथ मारिया चेतु मसंद दी पग थले डिग पई ते विचों हीरियां वाला कंगन भी बाहर जा पे चेतो दियां अखां नीवी धरती वेल नहीं दिंदी के गर्क हो जाए साहबा ने उस वेले पांच शस्त्रधारी सिंह बुलाए ते किया जाओ चेतो दे घर चेतो दे करो सिंह दूसरा कंगन भी कढ लियाए सिख दी भावना पूरी हो गई पर कलगीधर पातशाह दा मन इन्हां मसंदा वालों उचाट हो गया कि ये जड़े मसंद ने ये अमृत छकन दे

पंडितों की प्रीख्या ले दो लंगर लाए, एक विच मास बनाया, एक लंगर सादा बनाया। ते साहबा ने कहा जड़ा मास वाला लंगर छकेगा ओनू बहुत ही माया मिलेगी, जड़ा सादा लंगर छकेगा ओनू घट माया मिलेगी। मास खाण दे नाल सोने दियां मोहरां ज्यादा मिलनियां ने, ते सोच के बहुते मास वाले पासे बैठ गए, सादे पासे घट बैठे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिन्हां ने सादा लंगर खादा उन्हां पंडितां नूं चोखी माया दित्ती, ते जिन्हां ने मास वाला लंगर खादा जिन्नी कही सी उन्नी उन्नी माया उन्हां नूं दित्ती। पर इन्हां वल्लों भी मन उदास हो गया कि जिहड़ा आदमी माया बदले अपने धर्म ते पक्का नहीं रह सकदा, ओ जुल्म दा

उस वक्त औरंगजेब सी। औरंगजेब दे जासूसा ने औरंगजेब नू जड़ी खबर भेजी, ओदे विच लिखे है

चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। ऐ मनुख हृदय रूपी वेड़े विच परमाता परमात्मा रूपी नाम दादे तू चानना कर लवे, अज्ञानता रूपी हनेरा हमेशा हमेशा ले खत्म हो जाना। जे परमात्मा रूपी नाम दा तू हृदय रूपी वेड़े विच चानना कर लवे, चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। आओ आपा भी रल के इन्हों तुकानों पढ़िए कोई रसना खाली।

मरण लिखाए मंडल में आए, सबना मरना आया विछोड़ा सबना। हर जो जन्मे है, हर जो बने है, हर जो उपजे है, उस हर एक ने मरना ता है। जित दिहाड़े तनवरी साहे लय लिखाए, बाकी ये गल वखरी है। ओ मौत जो आम लोकां वास्ते, जिवें कबीर जी दा बचन सी, जिहे मरणे सब जगत तरासिया, जिस मौत ने लोकां दी मरण तो पहला ही जान कढ़ी। मौत ता पता नहीं कदों आउणी, मौत दे डर ने ही बंदे नूं मार रखिया, जीण नहीं पई देंदी। जिहे मरणे सब जगत तरासिया, सारा जगत तरा तरा कर रहा है जिस मौत, जिहदा नां लैणा चंगा नहीं समझिया जांदा। चार बंदे बैठे होण, कोई बंदा विच मौत दीआं गल्लां करन लग पवे, कहिंदे ने कोई चंगी जी गल कर, मौत दी गल माड़ी गल है, मंदी गल है, चंगी नहीं लगदी, जीण दी गल कर, मौत दी गल ना कर। जिस नूं भाई मूले ने, भाई मरदाने दे उस दो पैसिआं दे बदले मरना सच ते जीना झूठ ले के दिता सी, जिस नूं गुरु नानक ने प्रवान कीता सी, मरदानिआं कोई तां समझ वाला बैठा इत्थे सियालकोट विच, जिहड़ा मरण नूं सच समझदा है, और है भी सच। जिंदगी दे बारे कई तरह दे शुभे हो सकते ने, शक हो सकते ने, शंके रह सकते ने। गर्भ विच है जो इसका जन्म होवेगा, जिंदगी इस नूं प्राप्त होवेगी, कोई पक्की गल नहीं है, शंके वाली गल है। इसका जन्म हो गया है, इस नूं कुछ उमरा प्राप्त हो सकेगी, शंके वाली गल है। ये बोल सकेगा, ये तुर सकेगा, शंके वाली गल है। डर बनिया रहिंदा है, पता नहीं चल सके ना चल सके। सारी क्रिया शरीर दी ठीक चले ना चले, कल नूं पढ़ सकेगा के नहीं, परिवार वाला बन सकेगा के नहीं, कारोबार चल सकेगा के नहीं, हर किस्म दे शंके हो सकणगे। लेकिन एक गल परपक है, हर एक जीव दे संबंध विच इह जिहड़ा जन्मे है मरेगा जरूर, मौत ना टल सकेगी, हर जीव ते आवेगी। पर इस दे बावजूद भाई मूला तां कहिंदा सच है, जो हर हालत च वापरना ही सच है, जो नहीं रहना कल नूं जीवन ओ झूठ है। फिर भी मनुख चाहुंदा है सच दी गल ना करो, झूठ दी करो, मरण दी गल ना करो। जग मरण ना पाया नित आप लुकाया, मत जम पकड़े लै जाए जियो। मता किते जम आवे ते फड़ के लै जाए, बंदा हमेशा हजार जतन करदा है मौत तों बच सकण दे, ना कोई बचिया है ना किसे बच सकदा है। जो सच है, जो वापरना है, इस तों बंदा डरदा है, कहिंदा दी गल ना करो। जे मरने सब जगत तरासिया, कबीर जी कहंदे ने मैनूं तां समझ ही आ गई है, मरण विच भी एक आनंद है। कबीर, जिस मरने ते जग डरे मेरा मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। भावे मौत भी तीन तरह की कहंदे ने, शास्त्रकार कहंदे ने एक तां मरना ओह हुंदा है जदों मनुख दा आत्मक जीवन शुरू ही ना होवे, आत्मक मौत बंदा मर जावे, मरिया ही होवे। एक तां ओह मौत है, मैं कमाउंदा मर गया, मैं इत्थे उड़ीकदा मर गया, मरिया ही होया बंदा, जीवन शुरू ही नहीं होया क्योंकि जीण दा चज नहीं आया। एक ओह मौत हुंदी है जिहड़ी शरीर करके हो जांदी, लेकिन एक मौत होर भी है, ओह है मनुख दी हौं दी मौत, मैं मेरी दी मौत। जदों धर्म दे घर जन्म हुंदा है, इस पासे दी मौत हो जांदी, हौं दी मौत हो जांदी, ते बंदा इस मौत तो भी डरदा। जिस नूं ए मरना आ गया ना, उनू धर्म दे मार्ग ते जीना आ गया। जिनू धर्म दे मार्ग ते जीना आ गया, वो शरीर दी मौत बड़ी छोटी समझदा है, बड़ी तुच्छ समझदा है। जिन्हां नूं चज नाल जीना आ गया, सच्ची गल तां यह है कि चज नाल मरना भी उन्हां नूं आया। कबीर जी कहिंदे ने सो मरना गुर शब्द प्रकाशिया, गुरु के शब्द द्वारा मैनूं मरण दा पता लग गया। अब कैसे मरो, मरण मन मानिया, मरण ते चित करदा है, हौं करके मरण नूं चित करदा है। उंज वी जे मौत आवे जी आया, मोए मरने का चाओ है, मरो ता हर के द्वार, उधर जीवन शुरू हो जावे। मर मर जाते जिन राम ना जानिया, मरदे ता ओ ने, मरदे ही रहिंदे ने ओ, जिउंदे वी मरदे ही रहिंदे ने। जिन्हां नूं रब दा पता नहीं, राम दा पता नहीं, ईश्वर दा पता नहीं, धर्म दा पता नहीं,
मरनो मरन कहे सब कोई। हालांकि मरण दियां गल्लां बड़ियां हुंदियां ने, मरण दे संबंध च खोजां वी बड़ियां हुंदियां ने, मौत नूं टाल

जे थड़े ते बैठो बेनतियां करदा रहा। एक दिन परमात्मा ने बेनती सुन ली, आ गए, कह लगे खोल भाई बुआ तेरे हिरदे दे थड़े ते बैठी है। जां बुआ खोलिया इस हिरदे दे सिंघासन ते बहुत भीड़ कठी हुई हुई, किधरे ईरखा बैठी है, किधरे क्रोध बैठा है, किधरे होमे, किधरे लोभ, सारा थड़ा भरिया होया। परमात्मा ने पूछा बिठाएगा किथे, थड़ा तो तेरा खाली नहीं, एक वस्तु नू कढेगा तां दूजी नू पाएगा, मैनू बिठाण लई किथे था, थड़ा ते सारा भर के रखिया होया। कह लगा लै ए तां गल भुली गई सी, आया क्रोध दी बांह फड़ी बाहर छड़ आया, फिर आके काम नू बाहों फड़िया गलों फड़ के बाहर छड़ आया। जामुड़ वेख दे क्रोध उथे ही बैठे, मोह दी बांह फड़ दे बाहर छड़ आउंदे, फिर अहंकार नू बाहर छड़न आउंदे, फिर वेख दे मोह उथे ही खड़े। ए विचारा बाहर अंदर सारयां नू कढ़दा रहा, एक एक नू कह लगा निकलो मैं परमात्मा आ गए उनू बिठाने। ओ कहन लगे ओ परमात्मा ते तेरा अज आया, असी तेरे कई जन्मा जन्मा दे साथी, इनू नहीं छड़ सकदे। परमात्मा ने आख्या चंगा तू इन्हां नू बाहर कढ, फिर समा होवेगा आवांगे, आके बैठांगे, तेरा थड़ा खाली नहीं, हुण जदों थड़ा खाली होया फिर आवांगे। इंतजार करके परमात्मा वापस चला गया। हजूर कहंदे ने हुण समा है तौबा कर इन्हां गुनाहां तों, अते वाहगुरु दे अगे कर अरदास।

आओ भाई बंदी छोड़ नू अरदास की तीसी ना पादशाह सी कैद होए पे मेर कर सानू इस कैद तो बंद खलासी करा अपना पल्ला पकड़ा गुरु पंचम पातशाह अरदास कर दे पंच दूत मोह

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते बना।

सतगुरु कहिंदे ने जे मालिक नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा हो जा। इहदे विच कोई मेर तेर नहीं। कदे बच्चे ने किसे दूजे बच्चे नूं पुछिया, आ छोटे छोटे क्लास विच पढ़दे ने, अजकल ते ढाईआं ढाईआं तिन्नां तिन्नां सालां दे दाखल करवा दित्ते। कदे किसे दूजे धर्म दे बच्चे नूं किसे ने पुछिया भी तेरा धर्म केड़ा, तेरी जात केड़ी है, तेरी गोत केड़ी है? ना, आपस विच प्यार नाल हसदे ने, खेड़दे ने। सतगुरु कहिंदे ने जे रब नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा पुंजा। ये बड़ा भोला है, बड़ा चंगा है।